0: आकाशवाणी का तिरुवनंतपुरम केंद्र है। आइए आप सुनते हैं हिंदी पाठ। छात्राएं हैं जिसाए सजी और आत्मा मरिया।
1: नमस्ते जी।
2: नमस्ते, बैठिए। अपना अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम आत्मा मरिया है।
2: और तुम्हारा नाम क्या
1: है? मैं जिसा हूँ।
2: अच्छा, आप लोगों के घर में पेड़ है?
1: हाँ जी। जी,
2: आप लोगों ने पेड़ लगाया है घर में?
1: हाँ जी।
3: हाँ जी।
2: अच्छा, पेड़ हमारी संपत्ति है ना?
1: हाँ जी।
2: पेड़ों का संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। एक बार एक पेड़ की संरक्षण के लिए जूलिया नामक एक लड़की ने जो संघर्ष किया उसकी कहानी है जूलिया और लूना। यह कहानी आज हम पढ़ेंगे। श्रीमती नेहा सिंह की कहानी है। ये कहानी किसने लिखी?
1: श्रीमती नेहा सिंह ने लिखी।
2: श्रीमती नेहा सिंह ने लिखी। श्रीमती नेहा सिंह के बारे में सुना है?
1: नहीं जी।
2: अच्छा, मैं बताऊंगी। सुनिए, नेहा सिंह का जन्म 1982 मई 5 को वाराणसी में हुआ। नेहा सिंह का जन्म कब हुआ?
1: 1982
2: में हुआ। और उनका जन्म कहाँ हुआ जिसा बताइए?
1: वाराणसी में।
2: वाराणसी में हुआ। वे अंग्रेजी और हिंदी भाषा में लिखती है। श्रीमती नेहा सिंह अंग्रेजी भाषा में और हिंदी भाषा में लिखती है। उनकी 19 पुस्तकें प्रकाशित की है। उनकी कितनी पुस्तकें प्रकाशित की है?
1: 19
2: पुस्तकें। 19 कितना है?
1: 19।
2: 19 माने
1: 19।
2: वे बच्चों के लिए कई पुस्तकें लिखती है। उनकी पहली पुस्तक द वेनसडे बाजार 2014 में प्रकाशित की। श्रीमती नेहा सिंह की पहली पुस्तक का क्या नाम है आत्मा बताइए?
1: द वेनसडे बाजार।
2: द वेनसडे बाजार। वह कब प्रकाशित की जिसा?
1: 2014 में।
2: 2014 में प्रकाशित की है। नेहा सिंह का जन्म कब हुआ आत्मा बताइए?
1: 1982 को।
2: 1982 मई 5 को हुआ। ठीक है। नेहा सिंह का जन्म कहाँ हुआ?
1: वाराणसी में।
2: वाराणसी में हुआ। उनकी कितनी पुस्तकें प्रकाशित की है आत्मा बताइए?
1: 19
2: पुस्तकें प्रकाशित की है। उनकी पहली पुस्तक का क्या नाम है जिसका?
1: द वेनसडे बाजार।
2: द वेनसडे बाजार। ठीक है, अब हम पाठ भाग शुरू करेंगे। एक कहानी शैली में लिखा पाठ है। किस शैली में लिखा है?
1: कहानी
2: शैली में। कहानी का नाम है जूलिया और लूना। कहानी सुनिए। एक रोज कुछ हटे कटे आदमी एक बड़े से पेड़ को काटने पहुंचे। एक लड़की ने उन्हें देख लिया। वो झट पेड़ पर चढ़ गई। आदमियों ने पहले उसे समझाया, फिर धमकाया, बहुत डराया। मैं नहीं उतरूंगी, लड़की चिल्लाई और एक शाखा पर जा बैठी। आदमियों

0: सोचा आखिर कभी तो उधरेगी, तब काटेंगे पेड़ को। दिन हफ्ते महीने बीत गए पर लड़की तो उतरी ही नहीं। यह भाग एक बार आत्मा पढ़िए।
1: एक रोज कुछ हटे कटे आदमी एक बड़े से पेड़ को काटने पहुंचे। एक लड़की ने उन्हें देख लिया, वह छत पेड़ पर चन गई। आदमियों ने पहले उसे समझाया, फिर धमकाया, बहुत डराया। मैं नहीं उतरूंगी, लड़की चिल्लाई और एक शागा पर जा बैठी। आदमियों ने सोचा आखिर कभी तो उतरेगी, तब काटेंगे पेड़ को। दिन हफ्ते महीने बीत गई पर लड़की तो उतरी ही नहीं।
0: अच्छा, एक रोज माने वंस, कुछ हटे कटे आदमी, हटा कटा माने स्ट्रॉन्ग, कुछ हटे कटे आदमी सम स्ट्रॉन्ग पीपल एक बड़े से पेड़ को काटने पहुंचे। हटे कटे आदमी वहां किसके लिए पहुंचे? एक बड़े से पेड़ को काटने के लिए पहुंचे। काटना माने
1: टू
0: कट डाउन, पहुंचे पहुंचना माने टू रीच, पहुंचना माने टू
1: रीच।
0: एक बार कुछ बलवान आदमी एक बड़े से पेड़ को काटने के लिए आए, तब एक लड़की ने उन्हें देख लिया। हटे कटे आदमी पेड़ काटने के लिए आते समय किसने उसको देखा? एक लड़की ने देखा। एक लड़की ने उनको देखा, और पेंगुटी अवरे कंडो, वो पेड़ पर चढ़ गई। कौन पेड़ पर चढ़ गई? वो लड़की जल्दी ही पेड़ पर चढ़ गई। चढ़ का अर्थ है
2: टू क्लाइंब,
0: टू क्लाइंब। लड़की ने कहाँ चढ़ गई?
2: लड़की ने पेड़ पर चढ़
0: पेड़ पर चढ़ गई। यह देखकर आत्मियों ने पहले उसे समझाया, यह देखकर आत्मियों ने पहले उसे समझाया, समझाना मीन्स
2: पर्ने
0: मनसिलाका, फिर धमकाया, धमकाना माने टू थ्रेटन, भीषणी पड़तगा। पहले उसे समझाया लेकिन लड़की नहीं मानी, तो फिर लोगों ने उसको धमकाया और फिर बहुत डराया। डराना माने
2: टू फ्राइटन,
0: टू फ्राइटन, भयपड़तगा। बहुत डराना, बहुत माने वेरी मच, डराया, उत्तरी भयपड़ती। लड़की ने मैं नहीं उतरूंगी, उतरना माने टू गेट डाउन। लड़की चिल्लाई मैं नहीं उतरूंगी, लोगों ने उसको पेड़ से उतरने को कहा लेकिन उसने कहा मैं पेड़ से नहीं उतरूंगी। और इतना कहकर वो एक शाखा पर जा बैठी। शाखा माने डाली, डाली ब्रांच ऑफ ए ट्री। ആ മരത്തിന്റെ മറ്റൊരു ശാഖയിലേക്ക് കയറി അവൾ ഇരിപ്പായി, മരത്തെ കയറി അങ്ങിരുന്നു। ശാഖ മാനെ ബ്രാഞ്ച് ഓർ ഡാലി। ലഡ്കി ഉസ് പേഡ് കി ഡാലി പർ ജാ ബേഠി। ആത്മിയോ നേ സോച്ചാ ആഖിർ കഭി തോ ഉതരേഗി, തബ് കാട്ടേംഗേ പേഡ് കോ। എപ്പോഴെങ്കിലും മരത്തിൽ നിന്ന് ഈ പെൺകുട്ടി ഇറങ്ങുമല്ലോ, അപ്പോൾ മരം മുറിക്കാം। ഉസ് പ്രകാർ ദിൻ ഹഫ്തെ മഹീനെ ബീത് ഗയേ। एक हटे कटे आदमियों ने सोचा कभी तो यह लड़की पेड़ से उतरेगी, उस समय हम इस पेड़ को काटेंगे। लेकिन वे लोग कई महीने वहां इंतजार करते रहे, लेकिन दिन हफ्ते महीने बीत जाने पर भी वो लड़की पेड़ से नहीं
2: उतरी।
0: कई दिन, हफ्ते, हफ्ते माने वीक, आयचगल, और फिर महीने बीत गए। कई हफ्ते मीन्स वीक, महीने माने
2: मंथ,
0: मंथ ബീത് ഗയേ, ബീത് ജാനാ
2: ടു
0: പാസ്, കടന്നുപോയി, ധാരാളം ദിവസങ്ങളും ആഴ്ചകളും മാസങ്ങളും കടന്നുപോയി। പർ ലഡ്കി തോ ഉതരി ഹി നഹി, മഹീനെ ബീത് ജാനേ പർ ഭി വോ പേഡ് പർ സേ നഹി ഉതരി। മാസങ്ങൾ കടന്നുപോയിട്ടും വോ ലഡ്കി പേഡ് പർ ഹി ബേഠി രഹി। മാസങ്ങൾ കടന്നുപോയിട്ടും ആ പെൺകുട്ടി മരത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതേ ഇല്ല, അവൾ ആ മരത്തിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു। എന്തിനായിരുന്നു ഇറങ്ങിയാൽ എന്തോ സംഭവിക്കും? കാട്ടേക ഹെനാ ലഡ്കിനെ പെഹ്ലേ കഹാ മേ നഹി ഉത്തരൂംഗി। ലഡ്കിക്ക് ഇസ് നിർണയ പർ ആപ്കാ വിചാർ ക്യാ ഹേ? ലഡ്കിനെ പെഹ്ലേ ഉൻ ആത്മിയോ സേ കഹാ മേ നഹി ഉത്തരൂംഗി। ലഡ്കിക്ക് ഇസ് നിർണയ പർ ആപ്കാ വിചാർ ക്യാ ഹേ? ജിസാ ബതായേ।
2: जूलिया उस पेड़ को बचाने का दृढ़ निश्चय कर रही थी।
0: अच्छा ठीक है, जूलिया उस पेड़ को बचाने का दृढ़ निश्चय कर रही थी। वह पेड़ पर उतरे तो वे लोग, वे हटे कटे आदमी इस बड़े से पेड़ को काट कर ले जाएगा, है ना? इसलिए उस लड़की दृढ़ निश्चय लेकर उस पेड़ पर ही बैठी रही। जूलिया उस पेड़ को बचाने के लिए निश्चय किया था, इसलिए उस पेड़ पर से नहीं उतरी। दूसरा पैराग्राफ सुनिए। लोगों को जब पता चला तो उसके लिए खाना, पानी, स्टोव, किताबें, गद्दा, कंबल,

0: कपड़े सब ले आए। शुक्रिया, लड़की चहचहाई। उसने चिड़ियों की तरह पेट पर अपना घोंसला बना लिया। बारिश आई, सर्दी आई, भयंकर आंधी तूफान आए, बर्फ पड़ी, पर पेड़ ने लड़की को बचाए रखा और लड़की ने पेड़ को। जैसा ये पैराग्राफ पढ़ सकते हो?
1: हाँ जी,
0: पढ़िए।
1: लोगों को जब पता चला तो उसके लिए खाना, पानी, स्टव, किताबें, गद्दा, कंबल, कपड़े सब ले आए। शुक्रिया, लड़की चहचहाई। उसने चिड़ियों की तरह पेड़ पर अपना घोंसला बना लिया। बारिश आई, सर्दी आई, भयंकर आंधी तूफान आए, बर्फ पड़ी, पर पेड़ ने लड़की को बचाए रखा और लड़की ने पेड़ को।
0: अच्छा, कई महीने बीत जाने पर भी लड़की पेड़ से नहीं उतरी तो लोगों ने उसे खाना, पानी, स्टोव, पढ़ने के लिए किताबें, गद्दा, गद्दा माने
1: मैट्रेस,
0: कंबल, कंबल
1: ब्लैंकेट,
0: कपड़े, क्लोथ्स सब कुछ लेकर दिया, क्योंकि वे लोग भी उस पेड़ को काटना अच्छा नहीं लगता था, पसंद नहीं लगता था, है ना?
1: हाँ,
0: लड़की के समान वहाँ रहने वाले, उस गांव में रहने वाले लोग भी उस पेड़ को काटना पसंद नहीं करता था। इसलिए उस लड़की को सपोर्ट करने के लिए वहाँ के लोग क्या क्या दिया उस लड़की को? खाना लेकर दिया, पानी दिया, और इवन फूड कुक करने के लिए स्टोव भी दिया, और पढ़ने के लिए किताबें लेकर दिया, गद्दा, लेटने के लिए मैट्रेस कोंड कोडतो, कंबल ब्लैंकेट और कपड़े, उनको पहनने के लिए कपड़े दे दिए। इसी प्रकार लोगों ने सब कुछ लेकर दिया। ये सभी चीजें मिलने पर शुक्रिया लड़की चहचहाई। ये सभी चीजें मिलने पर लड़की ने क्या कहा उन लोगों से?
1: शुक्रिया।
0: शुक्रिया, शुक्रिया माने क्या है? शुक्रिया का अर्थ क्या है?
1: थैंक्स,
0: थैंक्स, धन्यवाद, है ना? धन्यवाद कहा और चीजें मिलने पर उसने शुक्रिया बताया और लड़की चहचहाई। चहचहाना माने से इन ए स्वीट टोन, मधुरमाई संसारिक, നല്ല സ്വീറ്റ് വോയിസ് അല്ലേ പക്ഷികളുടെ സൗണ്ട്? അതുപോലെ ചിടിയേക്ക് തര, പക്ഷിക്ക് തര, യാ ലഡ്കി ഭി പേഡ് പർ രഹതി ഹൈ കുച്ച് ദിനോ സേ, ഹൈ നാ? ഇസ്ലിയേ വോ ഭി ഏക് പഞ്ചി കി തര, ഉസ്നേ ചിടിയോ കി തര ഹി ഉസ്നേ ഭി ഉത്തര ദിയ മീഠേ സ്വര മേ, ലഡ്കി നേ ധന്യവാദ് കിയ। उसने चिड़ियों की तरह माने एक पक्षी की तरह पेड़ पर रहने के लिए घोंसला बना लिया। चिड़िया पेड़ पर क्या बनाकर रहती है? घोंसला बनाकर रहती है। उसी प्रकार लड़की भी उस पेड़ पर घोंसला बना लिया। घोंसला पक्षियों के लिए घोंसला तो बहुत छोटा है ना, लेकिन इस लड़की के लिए थोड़ा कुछ बहुत बड़ा घोंसला चाहिए। उसी तरह उस लड़की को रहने के लिए कुछ बड़ा सा घोंसला उस पेड़ पर सजाया। लड़की रहने के लिए पेड़ पर घोंसला बना दिया और एक पक्षी की तरह वो पेड़ पर रहने लगी। लड़की चहचहाई। यहाँ चहचहाई शब्द का प्रयोग क्यों किया होगा? हमेशा हमने इस प्रकार कहेगा लड़की बोली, है ना? लेकिन यहाँ लड़की चहचहाई क्यों इस प्रकार करती है? यहाँ लड़की चिड़ियों के घोंसले के समान पेड़ में तंबू बनाकर रहती है ना?
1: हाँ जी।
0: इसलिए चिड़िया तो चहचहाती है, उसी प्रकार पेड़ में रहने वाली यह लड़की भी चहचहाती है। പക്ഷികൾ ചിലയ്ക്കുന്നു, ഹെന, പക്ഷികൾ ചിലയ്ക്കാണ്, നല്ല സ്വീറ്റ് വോയിസ് ആണ്, മീഠേ സ്വരമേ. ഇവിടെ ജൂലിയ പക്ഷിക്കൂട് പോലെ മരത്തിൽ ടെന്റ് ഉണ്ടാക്കി താമസിക്കുക, ഒരു പക്ഷിയെ പോലെ തന്നെയാണ് മരത്തിൽ താമസിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് വളരെ സ്വീറ്റായിട്ട് പക്ഷിയെ പോലെ അവൾ മാധുര്യത്തോടെ ആൻസർ പറഞ്ഞു, ധന്യവാദ്. മേ നഹി ഉത്തരുങ്കി, ലഡ്കിനെ കഹാ മേ ഇസ് പേഡ് സേ നഹി ഉത്തരുങ്കി, ഇസ് പർ ആപ്ക നിർണയ ക്യാ ഹെ? बताओ।
1: जूलिया उस पेड़ को बचाने का दृढ़ निश्चय कर रही थी।
0: यस, जूलिया उस पेड़ को बचाने का दृढ़ निश्चय कर रही थी, इसलिए जूलिया ने इस प्रकार कहा। लड़की चहचहाई। यहाँ चहचहाई शब्द का प्रयोग क्यों किया होगा? यहाँ लेखिका लड़की चहचहाई बताती है क्यों इस प्रकार यहाँ चहचहाई शब्द का प्रयोग क्यों किया होगा, क्योंकि
1: यहाँ
0: लड़की
1: चिड़िया के घोंसले के समान पेट में तंबू बनाकर रहती है।
0: पेट पर तंबू बनाकर रहती है, है ना? पक्षी के तरह, पक्षी घोंसला बनाकर रहती है, लेकिन घोंसले में इस लड़की को रहना मुश्किल है, है ना?
1: हाँ जी।
0: तो वह उस पेट पर एक टेंट बनाकर उसमें रहती है। शेष भाग हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। कुछ शंका है?
1: नहीं जी।
0: अच्छा, आज का पाठ भाग यहाँ समाप्त होता है।
1: धन्यवाद जी।
0: धन्यवाद।

अभी तक आप सुन रहे थे हिंदी पाठ। अध्यापिका थे एन जया, छात्राएं थी जिसा ए सजी और आत्मा मरिया। इसी के साथ आज का हिंदी पाठ यही समाप्त होता है। नमस्कार।

0: ചലച്ചിത്ര ഗാനങ്ങൾ ഇനി 10:30 കേൾക്കാം. സമയം 8 മണി കഴിഞ്ഞ് 44:50. അല്പസമയത്തിനകം സമാചാർ സന്ധ്യ, തുടർന്ന് ന്യൂസ് അറ്റ് 9 ഡൽഹി റിലേ.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा. मुख्य समाचार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे. भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई. रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया. कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मॉनसून में सुधार से राहत मिली है, जुलाई में बारिश और तेज होने से खरीफ की बुआई में और तेजी आएगी.

0: केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्ट्यूक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया की मंत्री क्लेयर ओ'नील ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मेलबर्न में सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। दोनों वाद्य यंत्रों की सुर और ताल ने भारत और ऑस्ट्रेलिया की सांस्कृतिक साझेदारी को सजीव रूप में प्रस्तुत किया। इसके बाद मेलबर्न की प्रसिद्ध कथक नृत्य संचिता ओब्रोल के नेतृत्व में कथक नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने एआर रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबनन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा भी लिया। श्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
2: योग्यकार्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रबोवो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक आतंकवाद की स्थिति पर विचार विमर्श किया और कट्टरपंथ आतंकवाद के वित्त पोषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रम पर अपने विचार साझा किए। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने आज ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। रॉकेट का परीक्षण निर्धारित न्यूनतम 60 किलोमीटर की दूरी के लिए किया गया। पिनाका को आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान

0: अनुसंधान प्रयोगशाला के सहयोग से डिजाइन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, सेना और उद्योग जगत को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट के स्वदेशी डिजाइन और विकास क्षमता में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है, जिससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गई है। नई दिल्ली में अल नीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री चौहान ने कहा कि जून में 33% वर्षा की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन जुलाई में ये घटकर 24% रह गई है।
1: जुलाई की अच्छी बारिश से बोनी की संभावनाएं बढ़ गई है। अब बोनी और तेजी से होगी। कल तक 350,85,000 हेक्टर में बोनी हुई है। मानसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन और कपास पर थोड़ा प्रतिकूल बोनी पर प्रभाव पड़ा है। अब किसानों को यह सलाह दी जा रही है कि इनकी जगह मक्का, बाजरा और मूंग जैसी फसल जो कम समय में आ जाती है, उनकी बुआई को प्राथमिकता दें।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन से बातचीत की। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून के उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में आगे बढ़ जाने की संभावना है।
2: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश का अनुमान जताया है। विभाग के अनुसार शुक्रवार तक कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी ऐसी स्थिति बनी रहने की संभावना है। आज दिल्ली NCR में हुई हल्की बारिश से गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया। विभाग के अनुसार राजधानी में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय है और आने वाले दिनों में भी बारिश होने की संभावना है। विभाग ने कल तक दिल्ली के लिए बिजली गरजने के साथ साथ हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। रिशु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मुंबई से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में लगातार मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है।
3: नासिक और इगतपुरी के कैचमेंट एरियाज में भारी बारिश जारी है, जहां पिछले 24 घंटों में कई इलाकों में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। भरे हुए डैम से पानी छोड़े जाने के बाद गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में भी भारी बारिश हुई है, जिससे कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। पालघर जिले में पिछले 8 दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है, इसके चलते डैम से सूर्या नदी में पानी छोड़ा गया, जिससे नदी किनारे के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहीं सांगली जिले में शाम के वक्त तेज बारिश शुरू हुई, जबकि कृष्णा और वरना नदियां फिलहाल पूरी कैपेसिटी के साथ बह रही है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ EPFO खातों में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज जमा करने का काम पूरा कर लेगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने बताया कि नई केंद्रीकृत IT सक्षम सेवा CITES प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के खातों में 1,44,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जाएगी। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में जमा 440 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं। ये मामला वित्तीय लेनदेन और संदिग्ध धन की हेराफेरी से संबंधित है। जांच में पता चला है कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच पार्टी के बैंक खातों से लगभग 160 करोड़ रुपए एक निजी कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई में स्थानांतरित किए गए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा कर दी है। तुर्की की राजधानी अंकारा में नाटो

0: शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे ईरान के साथ बातचीत में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते। हालांकि उन्होंने कहा कि अमरीकी प्रतिनिधि वार्ता जारी रख सकते हैं, लेकिन इसके सफल होने को लेकर उन्होंने संदेह जताया।
1: मुझे लगता है कि अब सब खत्म हो गया है। मैं अब उनसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। उनका नेतृत्व बीमार मानसिकता वाले लोग कर रहे हैं। वे क्रूर और हिंसक लोग हैं, और अगर उनके पास परमाणु हथियार होता तो वो लोग उसका इस्तेमाल कर देते।
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1677 अंक गिरकर 76,504 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 517 अंक फिसलकर 23,882 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 60 पैसे कमजोर होकर 95 रुपए और 56 पैसे पर बंद हुआ।
0: खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज घोषणा की कि तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। श्री मांडविया ने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। पिछले वर्ष मई में बिहार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की मेजबानी की थी। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्ता कोत्सुक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मर्टेंस और यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युको ने जस्मीन पाउलिनी को हरा दिया। पुरुष सिंगल्स में टेलर फ्रिट्स का सामना अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और फ्लेवियो कोबोली का मुकाबला आर्थर फेरी से जारी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहले क्वार्टर फाइनल में शुक्रवार तड़के 1:30 बजे फ्रांस और मोरक्को आमने सामने होंगे। दूसरे क्वार्टर फाइनल में शनिवार तड़के 12:30 बजे स्पेन का सामना बेल्जियम से, और तीसरे क्वार्टर फाइनल में रविवार तड़के 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला होगा इंग्लैंड से। अंतिम क्वार्टर फाइनल में रविवार सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। भारत के वैज्ञानिकों ने पहली बार भारतीय क्षेत्र के ऊपरी आयनमंडल का सटीक मानचित्र तैयार करने की नई तकनीक विकसित की है। ये तकनीक जमीन और अंतरिक्ष से प्राप्त आंकड़ों को जोड़कर विकसित की गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि इससे उपग्रह संचालन, संचार प्रणाली और नेविगेशन सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा मॉनसून में सुधार से राहत मिली है, जुलाई में बारिश और तेज होने से खरीफ की बुआई में और तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की। और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
3: गुड इवनिंग। दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वर्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Melbourne to take part in the third India-Australia annual summit. India and Russia reaffirm commitment to strengthen counter-terrorism cooperation at multilateral fora. DRDO conducts successful flight test of Pinaka long-range guided rocket at Chandipur in Odisha. Monsoon recovery brings relief. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan expresses confidence that rainfall to gain further momentum this month, leading to acceleration in Kharif.